I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रेस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमा मुद्दत से दिल उदा दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

15 संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voormaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने।

एन संजय सावंत से आप गीत को सुने की थोड़ा प्यार चाहिए, उजाला रेडियो है ये। हर एक को शुभ दिन, शुभ रात्रि, पेश है हम सब की तरफ से।

फिल्म का नाम मैं तेरा हीरो एंड स्टेशन है द लुक्स्ट एंड गजलस्ट ओ जला रेडियो.

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल ना।

0: सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।
1: मुजस्सिम चांदनी हो तुम, अंधेरा है तो रहने दो,

और क्यों होता है प्यार, क्यों होता है प्यार, क्यों आता है बहार, ना तुम जानो ना हम। लकी अली और रामिया से आप सुने फिल्म का नाम कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, उजाला रेडियो से। अगला गीत उदित नारायण की आवाज में होंगे।

तू मेरे दिन में, मेरी रातों में, तेरी याद हम सफर सुबह और शाम। उदित नारायण की आवाज, फिल्म का नाम और प्यार हो गया।

किस का इंतजार? उजाला द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड ज्यादातर 19 सितंबर, और ये भी मेरफार थिएटर में आ रहे हैं आपके शहर में शेखर कुमार में हद से के साथ अयान मुखर्जी बॉय के दत्तीन और निजाम वागी डिजाइन मिशकाल बखलाइडिंग इस हंड फन मुंबई बीच ज्यादातर 19 सितंबर सनीचर की रात है तो रात के 7 बजे इन लोग और प्रोग्राम रात को 12 बजे खत्म होने वाले हैं। कॉपी टिकट्स ऑफ टाइम या मेरफार.nl।

0: You are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आज़ादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और जिस शौक से आप आज़ादी का जश्न मनाने यहाँ आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आज़ादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। रोटरडम से परिवार बहादुर, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार और पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर के पत्नी लड़कन आशा बॉयकल उर्मी और सुनील बहादुर के माँ पेम देदर्त के सास अनिल और मरलिशा देदर्त के नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी परपतो अल्बा गोंजालस के ननिया सास आईमे और फेलरी देदर्त के पर आजी स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गोलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो। रोटरडम लेयर वार्त एसलमोंदे की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेर खफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी जो थी। रोटरडम से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार और पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयकल उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पिम दीदर्त के सास अनिल और मल्लिशा

दीदत के नानी, किनारा और त्रिकय, बहादुर के आजी, अल्बा गोंजालेस के ननिया सास, आईमी और फेलरी दीदत के पर आजी, रोटरडम एसलमोंडे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका आज शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक रॉ सेंट्रम खुदसेई के मुर्दालय बुजम सिंगल 35 रोटरडम में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार के दिन में 2 बजे मांदा होम त्वी उर किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मार्टलिंकवेख 101 101 रोटरडम में।

0: था।
1: और मृत्यु समाचार सुनिए, कपिल आनंदन एसल से। परिवार बहादुर देदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत। बेटी आशा बहादुर की माँ, दामाद पिम देदर्त की सास, अनिल और मरलिशा देदर्त की नानी, आल्बा गोंजालेस के ननिया सास, आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी, रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेर खफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। कपिल आनंदन एसल से परिवार बहादुर देदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत। बेटी आशा बहादुर की माँ, दामाद पिम देदर्त की सास, अनिल और मरलिशा देदर्त की नानी, आल्बा गोंजालेस के ननिया सास, आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी, रोटरडम एसल मोंदे की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक रोसेंट्रम खुदजे के मुर्दालय बोजम सिंगल 35 रोटरडम में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे मांदा होम त्वी यूर किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मातलिंक वेख 101 रोटरडम में।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए खुश ज़ेलांड से। समस्त परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्तख यार और स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो लीन बासदेव बहादुर बया बहादुर सीता बहादुर इंदर बहादुर सुभाष बहादुर लिली बहादुर सांद्रा वेलखर्स बहादुर स्वर्गीय प्रीतिपाल बहादुर स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय भागमनी जगेसर बहादुर के भौजी स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी व्रीता लेन बहादुर की बड़की एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट विलखर्स के सरहज सभी लड़कन के बड़की माई काकी मामी नानी और आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेर्ख फोंदनवेख मेस्टर बोईती के निवासी जो थी। खुश ज़ेलांड से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्तख यार औत स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल की पतो लीन बासदेव बहादुर बेया बहादुर सीता बहादुर इंदर बहादुर सुभाष बहादुर लिली बहादुर सांद्रा वेलखर्स बहादुर स्वर्गीय पृथ्वीपाल बहादुर स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय भागमणि जगेसर बहादुर के भौजी स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी रीता लेन बहादुर की बड़की एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट विलखर्स के सरहज सभी लड़कन के बड़की माई काकी मामी नानी और आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज शनिचर के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक रोसेंट्रम खुदजई के मुर्दालय बुजम सिंगल 35 रोटरडम में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार के दिन में 2 बजे मांदाहम 2 यूर किए जाएंगे देला क्रीमाटोरियम मार्टलिंकवेख 103-101 रोटरडम में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार बहादुर के दुख में शामिल है। और जानकारी के लिए तार का नंबर दिए गए है 06-51-55-02-71

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: झंडा, एक हाथ में श्री नाम का झंडा, दूजे में तलवार, कोम का होगा कभी उधार।
1: और सुनने वालों, अगर आपके दिल अभी तक जुड़ल है आपके जन्मभूमि सूरीनाम से और आप मांगे हैं जाने कि हुआं पर का होवे है और कैसे होवे है, तब हर एक एतवार के दिन में 1 बजे से सुनिए उजाला रेडियो पर प्रोग्राम दिल है सरनामी। इस प्रोग्राम में रॉबी मक्का आपके फोड़ फोड़ के सरनाम के हाल चाल बतावे है। दिल है सरनामी में आप वो सब बतियन सुनिए जोन और कहीं पर ना सुनिए और कहीं पर ना पढ़िए। प्रोग्राम दिल है सरनामी लोहित महावीर पॉलिटिक इकोनॉमिक एनालिस्ट रॉबी मक्का के साथ हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सिर्फ उजाला रेडियो पर। प्रोग्राम दिल है सरनामी तो के सुने के पड़ी।
0: एक ही झंडा के नीचे अब सबको आना होगा।
2: कोट यारख तोर जन्मदिन है, तोर सालगिरह है, अब खाए त्राव, तोर विवाह होने वाले है, तोर शादी होने वाले है, या किसी का मुंडन संस्कार है। उजाला रेडियो पर फरमाइश आप दे सकते हैं 15 फरमाइश फोर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.nl।

बीनू कोटरावर तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, सुनवालो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बिनकोट राव तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है। नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

ये दिल मिलते हैं मुश्किल से, इश्क करो दिल से, द स्टेम फन जुबिन नौटियाल। उजाला रेडियो है सुन वालो, आई होप दैट यू लेकर गनीत फ्रॉम द प्रachtige मोये नंबर्स जहां भी आप व्हाट यू कैन डू बेंट। उजाला रेडियो है सुन वालो, गनीत लेकर फ्रॉम द

में संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

पूरा तोड़ दिन के देवे है तोड़ साथ, के तोड़ साथ सोते है, के तोड़ साथ जागे है, के कर साथ तू ओतो में घूमे है, और के कर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तुझ

वो कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। रोटरडम से परिवार बहादुर, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार और पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयकल उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पिम देदर्त के सास अनिल और मरलिशा देदर्त के नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी परपतो अल्बा गोंजालस के ननिया सास आईमे और फेलरी देदर्त के पर आजी स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गोलबिया बहादुर मंगरूलाल की पत्तो। रोटरडम लेयरवार्ट एसलमोंदे की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेर खफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी जो थी। रोटरडम से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार और पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयकल उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पिम देदर्त के सास अनिल और मल्लेशा देदर्त के नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी अल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी रोटरडम एसलमोंदे लेयरवार्ट की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग

क्रिया आने वाले सोमवार के दिन में 2 बजे मांदा होम त्वी उर किए जाएंगे देला क्रीमाटोरियम मार्टलिंकवेख 101 101 रोटरडम में।

और मृत्यु समाचार सुनिए। कापेल ऑन देन एसल से परिवार बहादुर देदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत बेटी आशा बहादुर की मां दामाद पिम देदर्त की सास अनिल और मरलिशा देदर्त की नानी आल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेरखफोंडनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। कापेल ऑन देन एसल से परिवार बहादुर देदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत बेटी आशा बहादुर की मां दामाद पिम देदर्त की सास अनिल और मरलिशा देदर्त की नानी आल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी रोटरडम एसल मोंदे की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाहक्रिया आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे मांदा होम त्वी उर किए जाएंगे देला क्रीमाटोरियम मातलिंक वेख 101 रोटरडम में।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। खुश ज़ेलान से समस्त परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल के आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो लीन बासदेव बहादुर बया बहादुर सीता बहादुर इंदर बहादुर सुभाष बहादुर लिली बहादुर सांद्रा वेलखर्स बहादुर स्वर्गीय प्रीतिपाल बहादुर स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय भागमनी जगेसर बहादुर के भौजी स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी व्रीता लेन बहादुर की बड़की एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट विलखर्स के सरहज सभी लड़कन के बड़की माई काकी मामी नानी और आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम निवेर्ख फोंदनवेख मेस्टर बोईती के निवासी जो थी। खुश ज़ेलान से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल की

लीन बास देव बहादुर, बेया बहादुर, सीता बहादुर, इंदर बहादुर, सुभाष बहादुर, लीली बहादुर, सांद्रा वेलखर्स बहादुर, स्वर्गीय पृथ्वीपाल बहादुर, स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय भागमणि जगेसर बहादुर के भाऊजी, स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर, स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी, रीता लेन बहादुर की बड़की, एरिका स्टूरमान और ह्यूबर्ट विलखर्स के सरहज, सभी लड़कन के बड़की माई, काकी, मामी, नानी और आजी, रोटरडम एसल मोंदे लयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार के दिन में 2 बजे मांदा हम त्वे उर किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मार्टलिंकवेख 103-101 रोटरडम में।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए कापेला आंदन ऐसल से बेटा ब्रिज आनंद कुमार बॉयको बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत बेटा ब्रिजानंद कुमार बॉयको बहादुर की माँ रोटरडम ऐसल मोंद लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि पहले सूरीनाम निवेरखफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। कापेला आंदन ऐसल से बेटा ब्रिज आनंद कुमार बॉयको बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत बेटा ब्रिज आनंद कुमार बॉयको बहादुर की माँ रोटरडम ऐसल मोंद लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु हो गई है और इन्हें लोग मारी बहादुर के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया सोमवार दिन में 2 बजे मांदा खांस्तांद त्वी उर किए जाएंगे। देला क्रीमेटोरियम मातलिंकवेख 101 रोटरडम जुइट में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-51-55-02-71 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार बहादुर के दुख में शामिल है।

पांच मिनट बाकी है सरे सात बजने में मेरे प्यारे सुनने वालों, यह है उजाला रेडियो और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज नए महीना सितंबर का पहला शनिवार है मेरे प्यारे सुनने वालों, जिस वीकेंड तथा सात नखावंत, तो तहे दिल से स्वागत करता हूं आज पांच तारीख सितंबर को, वो भी साल 2026। तमाम शॉपिंग वॉपिंग खाना पकाना सब हो गया, बहुत सारे लोग आज रोतनाम में थे और नर्सरीफ बहुत खाप करने के लिए या यूं ही घूमने के लिए आज हाफन दाख भी था, तो काफी लोग दूर दूर से आए थे, कल भी रहेंगे। मैंने भी विलम ब्रुख से कुछ झलकें मारी हैं दिमाग पर और बहुत सुंदर लगा। और अब मेरे प्यारे सुनने वालों, स्टूडियो में बैठा हूं रोतनाम का, यू आर के स्टूडियो रोतनाम में, और आपका दिल हम बहलाएंगे रात्रि में 12 बजे तक। वंस अगेन आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज़ें। और कुछ पीने के लिए आपने रखे भी आसपास, शायद आप अकेले हो, लेकिन हो सकता है दोस्तों ही प्रेमियों अपने परिवार के साथ सुन रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप काम पर सुन रहे हो, अपने मोटर कार में सुन रहे होंगे, या ट्रेम, जो हमारे भाई लोग ट्रेम और बस भी चलाते हैं सुनते हैं, और विदेश में शायद हो या विदेश से आए हो हमारे इस देश। जैसे भी हो, तहे दिल से स्वागत करता हूं, आप भरपूर एंजॉय करें द लोकल सॉन्ग्स, नए पुराने, आज कुछ पुराने भी है जबरदस्त वाला सेवा में जो हम पेश करने वाले हैं। और मेरे प्यारे से नौलो, ये प्रोग्राम का दौरान आप सभी को तो मालूम है, जो मुझे ऐप करेंगे 0 3 9 9 9 फॉर्मूला वही है, उन सभी के नाम से गीत हम चलाएंगे, एक लोकल हम नाम करेंगे, और जितनी ही जल्दी आप ऐप करेंगे उतनी ही जल्दी आप का गीत भी हम पेश करेंगे। और गाने जो है मेरे प्यारे से नौलो 8 बजे की इश्तिहारों के बाद सेवा में मैं पेश करूंगा। एपर्स के नाम नगमाएं, ये मखदूर खीफ विलियन रुस्तक नंबर ऑफ एन बैठक गाना, दस चलता नगमा, दत मख ये वेल दौर खीफ खीन डिटेल्स। मेरे प्यारे से नोलो 0 3 9 9 9 जहां पर आपको ऐप करना है, स्टूडियो का व्हाट्सएप है, और रहे आपके कामों काज, फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, आपके हर एक जानकारी के लिए इंफॉर्मेशन के वास्ते आप सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे दफ्तर को तार कर सकते हो अब 0 3 4 9 9 0 8 0 7 0 3 4 9 9 0 8 0 7, या तो 24 घंटे 7 दिन लगातार आप मेल के जरिए अपना कामकाज दिवा सकते हैं, और वो भी आपको मेल करना है info@ujala.nl। और हमारे सोशल्स पर भी आप एक झलक जाइए, मुझे ढूंढ, या मुझे नहीं, उजाला रेडियो को ढूंढिए और गेट कनेक्टेड टू उजाला रेडियो, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब पर उजाला रेडियो शामिल है, हमारा दोस्त बन जाइए, गेट कनेक्टेड टू उजाला रेडियो जोड़ जाइए, तरह तरह की सूचनाएं जो हम छापते हैं आसानी से आप पढ़ पाओगे। और भी बहुत सारे बातें आपसे कहना है मेरे प्यारे सुनने वालों, लेकिन फिलहाल चलो पहला गीत की ओर, और बातें तो हम करेंगे आज रात भर, क्योंकि 12 बजे तक जैसे मैंने कहा आपका साथ हम देंगे। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, एंजॉय योर वीकेंड, खनीत फन एंड खनीत फन सैटरडे नाइट फीवर, एक पुराना कुमार सानू टुगेदर विद इंडियन टेम्पटेशंस, हियर ऑन यू आर

Yeah, men se that is Kumar Sanu. Aayi hai bahar. Kar le tu mujhse pyar. Aur aisi mausam mein kar le tu humse pyar. एक दूजे से प्यार जरूर करना चाहिए मेरे प्यारे सुनने वालों। लड़ाई झगड़े से क्या मिलेगा, देखो ना पूरे वर्ष में कहां कहां आप देखेंगे लिंक्स रेक्स ऊपर नीचे, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े फसाद हो रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हैप मकार लीफ। अगर आप प्यार बरसाएंगे तो प्यार के बरसात में लोग एकदम झूम जाएंगे, खुश रहेंगे और मिलजुल कर कितना खूबसूरत ये दुनिया हो जाएंगे, है ना। फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे प्यारे से नौलो उजाला रेडियो पर आप चून है सैटरडे नाइट फीवर अति 7 मिनट खवीस ओवर हलवा। और एक गीत के अंदर अंदर में 5-6 लोगों ने ऐप किए हैं, तो आप समझ सकते हो कि 2 लोग और ऐप करेंगे। दन इस ब्लॉकिय फन 8 tot 9 alfo इतना स्नेल जा है 020-363-0008। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको ऐप करना है, हाय हेलो कहना है और ये कश आप उठाएंगे तो 8 बजे की इश्तिहारों के बाद मेरा ही चॉइस का एक लोकल आप तक हम पेश करेंगे। सागर मालिक और जिया रामबरन अब की बार। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों।

या फारिस बरसाती मेरे प्यारे से नालो खूबसूरत गीत टुगेदर विद फॉर्मेशन द स्टार्स, हमारे प्रिय सूरीनाम देश का द स्टार्स। मेरे प्यारे से नालो वक्त तो आगे निकल रहे हैं इतनी रफ्तार के साथ। Het is al kwart voor acht al geweest. और the locals जो हमने चुन करके रखा है आज कुछ एकदम नए हैं, और उन नए नगमाओं में से हम जरूर से जरूर चलाएंगे गाने। आज तो पांच है, 5 सितंबर, तो आप सोच सकते हैं कौन कौन नगमाएं आज रिलीज हुए हैं, कुछ कल और कुछ परसों। Het zijn er niet veel in de 5 dagen die zijn geweest van september, maar toch. Hamne lekker aaien, hè, or zeroer ze zeroer, zijn we met peeskringen. En ik heb nog een heleboel van augustus, jo apko sunana, hè, dat is wel een hele waslijst. Aatje kutje, wolle se begin ik al geraapte peeskringen. Van juli heb ik ook nog heel wat. En van juni, mei, अरे बाप रे, हम देखिए लाइक दम januari तक के गाना अबे हम तो लोगों के ना सुनाई ली। तो 020-363-0808 स्टूडियो का व्हाट्सएप है मेरे प्यारे सुनो लो, और ये कश उठाएंगे हाय हेलो कहने के लिए व्हाट्सएप के जरिए। तो आपके नाम से जरूर मेरी ही पसंद का एक लोकल सेवा में पेश करेंगे आपके लिए। थोड़ा सा त्रिनी पॉप भी हो जाए यार, दी दोनों टॉक स्टेट्स बेहतर एंड खुद एंड देखो क्या तैयार करके रखा है ये नगमा।

या कायदी मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत रिनी पॉप, एक और रिनी पॉप के साथ ये घंटे को हम समाप्त करेंगे। उसके बाद में इश्तिहारे आप सुनेंगे 8 बजे का मेरे प्यारे सुनने वालों, और तमाम सूचनाओं के बाद सेवा में फिर नतुर्लक हम हाजिर रहेंगे। ये कांडोल ओपन्ट एप ना 020-363-0800, maar weet dat het druk is en heb alstublieft geduld.

अच्छा ही मेरे प्यारे सुनने वालों और साथ दे रहे थे द अवतार बेंत नेचुरल, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

यस यस यस लेट्स डू इट मेरे प्यारे सुनने वालों। एनवर खान सीकर धुन हम जरूर से जरूर करेंगे और कर रहे हैं आपका सेवा, और आप भरपूर भी साथ दे रहे हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे एपर्स आज की रात्रि का ये प्रोग्राम में बहुत एक नॉर्मल हो खवेन बहन, और मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों का विवाद में एप करेंगे भी। आप सभी से बस यही हम कहेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, हैप आउट टू बिलीव खदुल्त। हो सकता है कि आपका गीत कुछ देरी से आए, जिस फॉलो होल्डर से एप्स आए हैं अंडर उसी फॉलो होल्डर से लोगों के लिए गीत हम चलाएंगे। इट इज 12 मिनट ओवर द क्लॉक फन अख मेरे प्यारे सुनने वालों, 8:12 गुजर चुके हैं। आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन मनचाहा उजाला रेडियो है ये। मैं हूँ आपका यारो का यार रतन राम दुलारे पांडे, और सैटरडे नाइट फीवर जब भी शनिवार को मौका मिलता है आपका सेवा करने चले आए। एंड दन डू नॉट टू लुक मैट द वीकेंड लीचेस एंड दैट इज नॉट टू लुक द हेयर लाइक लोकल्स। स्टूडियो का व्हाट्सएप है, और जो लोग भी ऐप करेंगे उन्हें मालूम है रतन गिफ्ट आल्टेट अंतवर्ड, और आज भी सभी को जवाब मिलेगा व्हाट्सएप पर। आप मत भूलिए अपना नाम लिखने का और आप कहां से ऐप कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना मैं पसंद करता हूं कि मैं किससे बातें करता हूं।

को सुन रहे हैं। तो मेरे प्यारे सुनोलो, आपको तो मालूम है कि कल खूबसूरत प्रोग्राम भी होने वाला है।

जरा ठहर जाओ, तरब की दिल ये पुकारे। लता जी का ये नगमा द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, ईरानीवार 9203630008 जहां पर आपको ऐप करना है अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से गीत मैं चलाऊं। हमारी लिस्ट पर दूसरा नाम है अमसनम सेंट्रम का प्रभाजी, और प्रभाजी पका चुके हैं, खा चुके हैं, अब रिलैक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उजाला रेडियो सैटरडे नाइट फीवर। और आज प्रभाजी हमने भी कुछ कम खास नहीं खाया है, रोटी आलू और मसाला का केप, तीता तीता मर्चा पिसलवा, और का नाम है कुसबंती, और रोटी दाल के रोटी था। और अभी जो हम चबा रहे हैं दत्सेन का बोले छोटा छोटा जोन किप रहे हैं ओके मैसेना में लपेट करके बाका करल गल है, और ओके हम चबायला तरीके से मैं तो लेकर चटनी चतनिया जो है ये का नाम है आम और ग्रीतल आम और ग्रीति करल वाल पपाया है, बहुत तीता ना है लेकिन ठीक है। तो प्रभा जी थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए, आप अपना शनिवार को खूब एंजॉय करें। और मैं देखता हूँ गाने वाले आपके लिए शेखर कुमार, ये नगमा फॉर प्रभात अमसलम सिंड्रोम।

वादा रहा प्यार से प्यार का और अब हम ना होंगे जुदा। अरे भाई जुदा क्यों होंगे, एक तो ही दिन हमें तो जाना है, उस पल तक हम जुदा नहीं होंगे ये वादा रहा। शिखर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और मैं देखता हूँ घड़ी की तरफ, दान इस ताल एक मिनट ओवर द क्लॉक फन हाफ नहीं है, सरे 8:01 गुजर चुके हैं। और एपर्स के नाम करता हूँ गीत और स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह कार में बैठकर प्रोग्राम को सुन रहे हैं मोटर कार में, तो एंजॉय स्वाग प्लेट अच्छी बेर तुरख बेन फन आसिया होप दैट ये खनोते हैं। En nu, lekker genieten. Ik groep zo dat giet. Eind augustus ka jo release hua. Pichele hefte hamne ye giet kochelaya. Logo ne pasand ki. En je weet, ik kan niet herhalen op een avond. Dan draai ik het maar één keer. Maar, het nal ook enjoy kiet het. To mijn soch ta hoon ye giet. Swagri ke naam. Chalo, chala tete. Enjoy. Voor Swagri Hans Lachman Singer uit Soetermeer.

Ja, beautiful, mijn pjane zin wel op. Prachtig gezongen. En prachtig begeleid. Je hebt haar weer eens. Mary Piggy Piggy is die balkon per gegeven. मेरे प्यारे सुनने वालों, अगले गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। और रोटरडैम शहर में जॉनी कालीचरण भैया भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, हमेशा सुनते हैं प्रोग्राम को और ऐप करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद जॉनी कालीचरण जी। भैया एक गीत हमने तैयार करके रखा है एकदम फेयर्स फॉर द पेयर्स, जफरमात सी सूर्य और सुजल उमराव जी का गाया हुआ एक बकेंड ढोबिनिया वाला फोर भैया जॉनी कालीचरण आयत रोटरडैम।

0: Abbiamo scelto la persona, ma hip hip hip hip hip.
1: Sujal Umrao, mi ripeto se non lo metto formazione, Surya. Saturday Night Fever है ये मेरे प्यारे सिनुवालो द लोकल सेवा में पेश हो रहे हैं हियर ऑन यू आर आपी का मनचाहा और ये प्रोग्राम जिस तरह से है उसी तरह से हम सजा रहे हैं सभी एपर्स के नाम जो लोग कश उठाए हैं एप करने के लिए स्टूडियो में अपने तकदरी नौलाख उन सभी के नाम से गीत चला रहा हूँ बस आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सबर करना पड़ेगा आप सभी को क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबा है और नगमाएं भी चार पांच मिनट के होते हैं कोनो कोनो तो और लंबा तो अभी शेड्यूल सभी के लिए चलाएंगे ये वादा रहा अब की बार मैं चल रहा हूँ आम्स्टेल्फीन की ओर जहाँ पर समधिनिया सुशीला चंद्रिका सिंह जी है और बितिया रानी मालती तो मालती जी और सुशीला जी के नाम अगले गीत हम करेंगे और कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद चून करने के लिए और आपके ऐप के लिए आप दोनों एंजॉय करिए अपना वीकेंड एंड एक गीत हमने तैयार करके रखा है द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागिद हुसैन और ये गीत आप दोनों के नाम करते हैं

किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन, मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं। अभी इस घंटे का आखिरी गीत हम पेश करने जाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, ओमदात हम भर चुके हैं, ऑलमोस्ट 9 o'clock यानी कि 9 बजे अभी इश्तिहारे होंगे और हम 9 बजे तक आन पहुंचे हैं। अम्सदाम का मानो ने भी प्रोग्राम पे चून किए हुए हैं, उजाला रेडियो पर चून किए हुए हैं और मानो भैया भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं। डंकीवेल मानो आपके ऐप के लिए एंजॉय, यू आर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर और एंजॉय ये नगमा फन मिस्टर ब्लैक जो पिछले महीना रिलीज हुआ है, काफी पॉपुलर चटनी मिक्स है। ये गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों हम बढ़ चलेंगे 9 बजे के इश्तिहारों की ओर और इश्तिहारों के बाद हम वापस आएंगे लेकर ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से। ये कांडोल ओपन लाइव ऐप अभी मौका है लोगों के लिए गीत चलाने का 0303 9 लाख 9 लाख। दिस इज फॉर मानो एट

सूरज हुआ मठम और चांद चलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, 9:09 गुजर चुके हैं, ये है आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और एकदम लाइव एंड डायरेक्ट QR की स्टूडियो रतनराम से फिर एक बार हम पेश कर रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर द ब्यूटीफुल लोकल्स, सेवा में पेश किया जा रहा है और एक घंटे लगातार एपर्स के नाम हमने गीत चलाए हैं और लिस्ट काफी नाम है, तो आने वाले 2 घंटे जरूर से जरूर भी लोगों के लिए गीत हम चलाएंगे। तो मेरे प्यारे से नोलो 0 3 3 9 0 0, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं, ये मग दौड़ खीफ ऑफ यूर नंबर विल ऑफ अन अंचलता। लेकिन आपको मालूम रहे कि 11 से 12 बजे दंदो नतालते दुरुस्त खान मेथाली मसूल। मिके जी आयुद दनहाग, दंकिवेल मिके आपके ऐप के लिए, मिके जब भी आपको मौका मिलता है आप सपोर्ट करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद, दंकिवेल शुक्रिया। एक गीत हमने तैयार करके रखा है मिके, आयुद दनहाग आपके नाम करता हूँ।

रहा है। शरोन बिंद्राबन की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, ये खूबसूरत गीत आप तक हमने पेश किया है। हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के वास्ते मेरे प्यारे सुनने वालों, चेक www.ujala.nl ऑफ ऑन सोशल्स, तू जाने दो। हम हार्लेम की ओर बढ़ चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, वहां आइलिन जी भी प्रोग्राम से जोर आनंद ले रहे हैं, उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं। तो आइलिन जी को कहेंगे अनहील मोए साथ रख, एंजॉय योर वीकेंड आइलिन जी, और बेहद खुशी है हम कि आप ने फिर चुन किए हुए हैं, और आपकी ऐप के लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। गीत तैयार करके रखा है और डिफरमात से साउंड्रॉनिक आइवन जी गीत गाएंगे, आइलिन के नाम अठालम।

लग जा गले कि फिर ये रात कभी हो ना हो, द साउंडट्रॉनिक्स मेरे प्यारे सुनने वालों, आइवन की आवाज में गीत हमने आप तक पेश किया है। एनवर खान वेयर नाम सदम मेरे प्यारे सुनने वालों, कैटरीना वहां प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो कैटरीना डंक यू वेल आपके ऐप के लिए फैन दच आफ खस्तेम बेन कैटरीना फनोइट ओन्स मोय होस्टेड। शेखर कुमार का गाया हुआ गीत कैटरीना के नाम है एम्स्टरडम।

चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। शिखर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। पता नहीं आप जहां पर हैं, खसलख है मेरे प्यारे सुनने वालों, यहाँ स्टूडियो में बहुत खसलख है और उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ का जो खसलख है थे आप तक हम आपकी रेडियो के जरिए, उजाला रेडियो के जरिए वहां पर भी हम अपना यहाँ का खुशियाली रेडियो के जरिए भी बात रहे हैं। Volgens mij is het buiten, ja buiten dat het donker is, maar volgens mij regent het ook een beetje, dhimi. Aur temperatuur bhi kuch saka bhel hai, naar 18-17 graden. Maar het is ook wel lekker toch? Mere pyare sunalo, main yahan chicken, kaise bole? Het is geen kipnuggets. Ghar ka banawal met maizena. Wordt dat niet pittig, hè? Wordt na pittig, na. Totani se chutney hum le li. Aur chutney jo hai, grit karal wal hai. That's my favorite. Grit karal aam aur papaya. To maine milaye aur bahut maza aa rahe hai. Aur kabhi kabhi मन ये मैं चाहता हूँ कि मैं असी कम दिन सौ है का बोले गो रोती तन सौ रिन रोल ऑल्सो सोर्ट व्रेप माया व्रेप कहाँ मिली मारे दिस हेल कुर एंड इट इज सो सिंपल इतना सिंपल है ही किप डाई या किप फिले ब्लॉकेस में काट के मारिनेट करके एक अंडा फोड़ के और अब खेत में दन हाल ही हम दूर देख फन मैसेना और उसके बाका कर सके ना ना अपना बाका कहीं मुक्की ने सोच दूँ वॉक पान में मैं ना खाए मैं थ्रेस ऑफ सो पर दन ओके इतने मैं दिस वाज मेर बदौलत अल स्नेक काफी मजा आ रहे हैं, काफी मजा आ रहे हैं। रिया कल्लू जी भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं चुन किए हुए उजाला रेडियो पर। तो रिया जी, आज फिर एक बार आपको मौका मिला चुन करने के लिए और माफ्ट स्टेम ऑफ यू आर डंकी वेल आपके आपके लिए एंड ब्लेव फॉर ऑल खनी तफन लेव कारिन बैतली मेरे प्यारे से नॉलो टूगेदर विद सबरोसो ये नगमा रिया कल्लू के नाम।

Marion Beitali, mere प्यारे सुनने वालों, मैंने फरमाया सी सब्रोसो, तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सुनने वालों, 6 मिनट गुजर चुके हैं सरे 9:33 ओवर द क्लॉक फन 3:30 उजाला रेडियो सैटरडे नाइट फीवर द वीकेंड वाइब्स द मोयो लोकल्स हियर ऑन यू आर। En ik weet niet of ze al ondertussen gearriveerd zijn. Lekker in Duitsland ze Ravana horen het he. Bijna het Ordevica met de auto naar Soetermeer. Toen dank jullie wel bijna je Ordevica je tune karne ke liye in de auto. Lekker afstemmen. Op you are. Je nagma. Aap dono ke naam karta hoon. Bijna je. और देविका जी अच्छुत मेर।

चांदनी रात है तू मेरे साथ है, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे होलैंड के अंडर में सागर मालिक जी की आवाज। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सिनवालो हम बढ़ चलेंगे बरेरा की ओर, जहां पर मफराव एंड मनेर बिहारी अपनी हिती प्रेमियों के साथ मिलकर प्रोग्राम सुन रहे हैं। टू द फैमिली बिहारी जी को हम कहेंगे थैंक यू, वेल धन्यवाद आपके ऐप के लिए। एंजॉय योर वीकेंड, ये शनिवार आप भरपूर एंजॉय करें, अपना वीकेंड आप एंजॉय करें। एक गीत हमने तैयार करके रखा है और फैमिली बिहारी जी के लिए अद्भुत रहा।

जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना ही पड़ेगा। अमोय रेत्रो फैशन मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त तो काफी रफ्तार से आगे निकल रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं 10 बजे की ओर। और अभी 10 बजे इश्तिहारे फिर एक बार आप सुनेंगे और तमाम सूचनाओं के बाद हम फिर सेवा में हाजिर रहेंगे लेकर ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। मर्स ब्रुक में प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं चित्रा जी और हिरेंद्रू। तो चित्रा जी और हिरेंद्रू जी, बहुत बहुत धन्यवाद चून करने के लिए। एंजॉय योर वीकेंड। और एक नगमा डफरमासी फ्री स्टाइल और सूरीनाम का हमने तैयार करके रखा है नगमा, जो अमरीश गाएंगे और पुराना चटनी मिक्स है। ऑल हू वेल, ये गीत यूनी में रिलीज हुआ है इस साल में, एक पुराना नगमा फिर से न्यू याश में। तो चित्रा जी और इंद्र जी के नाम अटमार्स ब्रुक।

या फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी, डिफरमासी फ्री स्टाइल और अमरीश की आवाज में गीत आप सभी ने सुने हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। एक आखिरी गीत और इस आखिरी गीत के बाद मेरे प्यारे सुनो, हम 10 बजे के ब्रेक की ओर बढ़ चलेंगे और मैं गीत तैयार करके रखा है आरएनएम में जो रहती है शारदा, शारदा डंकीवेल आपके अपकली फेंडा चाफ खस्तेम बेन तो प्यूआर और एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय दिस सॉन्ग एंड नुखमास बदंग शारदा ऐट आरएनएम, ये नगमा आपके नाम। मेरे प्यारे सुनो, इस गीत के बाद ब्रेक होंगे और मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

मेरे प्यारे सुनने वालों, वेलकम बैक। 10 मिनट गुजर चुके हैं 10 बजकर। मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो पर आप चून किए हुए हैं और प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं सैटरडे नाइट फीवर लाइव एंड डायरेक्ट क्यू आर के स्टूडियो रतनाम से जो पेश हो रहे हैं। मैं हूं रतन राम लाड़े पांडे और फिर एक बार आप सभी को स्वागत करता हूं एचएस वीकेंड लेकर खनीत। मेरे प्यारे सुनने वालों, और लेकर खनीत में होता है दोस्तों हिति प्रेमियों के साथ लेकर ईट लेकर ड्रिंक लेकर खनीत। तो एपर्स के नाम गीत करता हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, 0 3 9 9 9 जितने लोग भी ऐप किए हैं उन सभी के नाम से गीत चला रहा हूं। एवखा खून लेकर फेर्डर ओसडोरप से भी ऐप आए हैं, ओसडोरप से सबिता जी का ऐप आए हैं ओसडोरप से, ओसडोरप अमस्टरडम। तो थैंक यू वेल, बेहद खुशी है हम सबिता जी की आपने भी चून किए हुए हैं। उजाला रेडियो पर कविता सुखू का गाया हुआ एक नगमा मैं सबिता के नाम करता हूं ओसडोरप।

कविता सुखू मेरे प्यारे सुनने वालों, प्रार्थक मोह गजों देख लेना मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं अगले गीत की ओर आपको ले चलेंगे। 9:15 मेरे प्यारे सुनने वालों, साल क्वार्टर ओवर 3 और अगले गीत जो है फैमिली भगवान दास अर्थ अलकमार बोले टाइम अपने अर्थबाव शहर में बैठकर लेकर खनित फनत वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं अपना शनिवार खाना पीना के साथ एन नटुलक उजाला रेडियो। तो फैमिली भगवान दास को हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप कैब के लिए चून करने के लिए। एंजॉय योर वीकेंड भरपूर और आप सभी के नाम फैमिली भगवान दास ये नगमा मैं नाम करता हूं दारे नालकमार।

या शेखर कुमार मेरे प्यारे सुनने वालों, तरह तरह के नगमाएं ये लोग फिर से सजा रहे हैं और नीली नीली आंखें ओ मेरी जान आप तक हमने पेश किया है। श्रीराम रतनम में जो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं अभी वो है रोहिणी कल्लू जी, और रोहिणी कल्लू जी को हम कहेंगे धन्यवाद। एंजॉय योर वीकेंड और एंजॉय यू आर अनिल भीम और कविता वंस अगेन, कविता सुखुजी, अब की बार अनिल भीम के साथ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। मैं ये गीत मुझे काफी पसंद है, पता नहीं क्यों, शायद आपको पता चल जाएगा क्यों। लेकर बीत एक वेद नीत मोए खुद खुशोंग एक वेद नीत एक वेद तेहनीत। लेकिन रोहिणी कल्लू जी, मैंने इस गीत को देखा, काफी बार चला चुके हैं, आज फिर एक बार, लेकिन आपके नाम से मैं चलाऊंगा ये नगमा, अनिल भीम का गाया हुआ और कविता सुक्कू फोर रोहिणी कल्लू और श्रीराम रतनम।

अनिल भीम मेरे प्यारे सिनेमालो एंड टुगेदर विद कविता सुखू। और कविता जी का एक और गीत हम अभी चलाएंगे कुछ देर में। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सिनेमालो, 4 मिनट बाकी हैं और वो भी 10:30 में। 4 मिनट 4 o'clock फन हाल फेलफ सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं हियर ऑन यू आर, आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन मेरे प्यारे सिनेमालो।

मेरे प्यारे सुनने वालों, मैंने आप सभी से कहा है, लेकिन फिर एक बार कहता हूं कि कल 1 बजे दोपहर को हियर ऑन यू आर प्रोग्राम एकदम नए रूप में उस पॉलिटिक्स या ऑफ 12 पॉलिटिक सूरीनाम कैनर एंड उस सूरीनाम से पॉलिटिका एनालिस्ट रॉबी मक्का जी प्रोग्राम में आएंगे 1 बजे प्रेजेंटेशन जो होंगे लॉयड महावीर जी के हाथों में एकदम नए रूप में। प्रोग्राम का नाम है दिल है सूरीनाम, दिल है सरनामी, दस्तान फन सूरीनाम, तरह तरह की बातें जो एक्चुअल है सूरीनाम का। कल मोर्ख फनाफ इन यूर हीर ऑन यू आर दिल है सरनामी एंड दैट इज द होम सो। दुनिया के किस कोने में भी हम रहेंगे, अपना दिल तो सरनामी है। मोर्ख रॉबी मक्का एंड लॉयड महावीर एक बार मन्यूत आप भी तो चून कर ले लेना कल दोपहर 1 बजे को हियर ऑन यू आर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम में द इंटरव्यू में रॉबी मक्का। ब्रीडा में गायत्री प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। गायत्री डंकीवेल धारे ब्रीडा, आपने चून किए हुए बहुत बहुत धन्यवाद। Enjoy your weekend, enjoy you are, enjoy Saturday Night Fever। और हमने गीत को तैयार करके रखा है सत्यम और नीलम की आवाजें, ये दोनों मिलकर गीत गाएंगे। और गायत्री के नाम करता हूँ अब ब्रीडा।

वादा रहा सनम, होंगे जुराना हम, चाहे तो चाहे ये जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। नीलम और सत्यम माटाडीन जी फंड फरमात से फ्री स्टाइल अपने आवाजों में गीत गाकर सुनाए हैं आप तक, हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया है। अगले गीत मेरे प्यारे सुनोलो अल्फनंद रेन में जो रहती है कमला, कमला भी चून किए हुए है। यू आर उजाला रेडियो पर और एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड शनिवार, और खास करके उजाला रेडियो सैटरडे नाइट फीवर। तो एक गीत हमने तैयार करके रखा है कमला जी के लिए, वंस अगेन कविता सुखो एंड एन टू बैंड, लेकर मोय बचाता पेश करता हूँ। हीरा निवार डंकी लाल कमला फोर ए पी, एंजॉय योर वीकेंड।

तेरा नशा कविता सुखू विद एन टू बैंड हीर ऑन यूर मेरे प्यारे सुनने वालों द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकल्स आप तक हम पेश किया करते हैं और स्वाख में प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं गिरवाल्दो जी मरखरी जी और प्यारी बेटी शरीदा तो हेरवाल्दो मरखरी जी और शरीदा थैंक यू वेल फॉर द टाइम हियर ऑफ यू आर खनित फॉर योर वीकेंड खनित फॉर एलकार एंड खनित फॉर यू आर मुका सिंह ऑफ ट्वेल मुकेश नंद कुमार सिंह की आवाज में ये नगमा हेरवाल्दो मरखरी जी और शरीदा के नाम दारिन स्वाहा

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों, हम आपको बहुत ही दूर चले ले जाएंगे, और वो भी अक्रॉस द ओशियन, अटलांटिक ओशियन, वो बड़का देश जिसका नाम है USA, अमेरिका, द स्टेट टेक्सास में। वहां पर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, और हमेशा जब भी मैं शनिवार को प्रोग्राम बनाता हूं, तो अजय और सुनीता अपनी हिती प्रेमियों पलवार के साथ मिलकर चून किए करते हैं, एंजॉय कर रहे हैं UR। उसके लिए दिल से धन्यवाद अजय और सुनीता जी, दार इन टेक्सास इन अमेरिका, वारत वारमिस एंड वे है बना द वारम तहीर नीदलंत एंड लकवत फॉर कूलिंग, बारिश भी हो रहे हैं। स्टेरक्तदार मेतत्वीर मारोन सेतन ब्लाई बने कि आप सभी ने चून किए हुए हैं हियर ऑफ UR। ये नगमा आप सभी के नाम करता हूँ,

Ja, ja, ja, dat was natuurlijk prachtig. The Tiger, Kumar Sanu, together with Indian Temptations. Jenny भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं. Jenny, thank you well for your appear. Farsialized Muhammad Khan और सागर मलिक जी की आवाजें. Jenny के नाम मैं ये गीत करता हूँ. Thank you well, Jenny. Enjoy your weekend. Enjoy your art. Enjoy this song.

दिलजिंद शहीद वागिद हुसैन की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों हीरो निवार अच्छा 3 मिनट ओवर 11 मेरे प्यारे सुनने वालों 11:10 गुजर चुके हैं सैटरडे नाइट फीवर का आखिरी घंटा और इस आखिरी घंटे में ओनली सोल्स मेरे प्यारे सुनने वालों उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से आगे का 4 घंटा हमने पेश किया है नगमाए जो पेश हुआ है आप सभी ने पसंद भी किए होंगे और आखिरी में ये लोकल का ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर में ओनली सोल्स और एक गीत चलाने जा रहा हूँ इस इवनिंग में जो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं लक्ष्मण जी थैंक यू वेला आपके ऐप के लिए एंजॉय और लक्ष्मी जी आपके हमारे और सभी के दिलों में बसे हैं ये नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों आप सभी एंजॉय कीजिएगा प्रशांत राम जतन की आवाज़ और ख़ास करके लक्ष्मण जी के नाम करता हूँ आज की इवनिंग

प्रशांत राम जतन मेरे प्यारे सुनने वालों, सुहानी चांदनी हमें सोने नहीं देती। दिस इज विपिन सक्तेवा, तेरे दर पर आया सनम।

तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो देखो हम चले आए। विपिन सखदेवा की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, गीत अभी आप सभी ने सुना है। वखान सो में तीन निजाम, निजाम की आवाज में गीत आप सुनेंगे। और मैं आप सभी को ये भी बतला दूं कि मेरे प्यारे सुनने वालों, आज शनिवार है। मोर्ख है वो प्रोग्राम फान लॉयड एंड रॉबी मक्का, एकदम नया दिल है सूरीनामी, दस्तान फान सूरीनाम। दोपहर को 1 बजे इन मेडाख इन यूर लाइफ हियर ऑफ यू आर। एवर्ड बतरेफ मैं मेरे प्यारे सुनो, मेरी बात जो है तो अगले हफ्ते वुंसदाग दोनराग एंड सातराग तीनों दिन आप सभी का सेवा करने चले आएंगे। 9 तारीख सितंबर को पेश करेंगे बैक टू द फ्यूचर रात्रि में 6 से 9 बजे। और गुरुवार को 10 तारीख सितंबर को पेश करेंगे आज से 11 बजे प्रोग्राम दिल की आवाज। और ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर 12 तारीख सितंबर को फिर हम पेश करने वाले हैं, आपको ये मालूम रहे। निजाम वागी हुसैन, दिल तुझको दिया क्या बात है।

निजाम वागित हुसैन मेरे प्यारे सिनवालो एन वखान यूनार द फरमासी रेसलेस आइटम सनम लाइफ अशोक दुर्गा को आप सुनेंगे तू इश्क मेरा है ये

सलीम वागित हुसैन, मेरे प्यारे सुन वालों, खूबसूरत गीत बाखुदा तुम ही हो इन्होंने गाकर सुनाए हैं। एनी कैप न्यू इंच क्लार्स्टान, मेरे प्यारे सुन वालों, दैट इज अर्नोल्ड मलाहे, मेरा दिल चाहे दिस एपिक नो नोइट खोर मौखा न्यू सामा एंड आर लुस्टर हियर ऑन यू आर

अर्नोल्ड मला है मेरे प्यारे सुनने वालों, मेरा दिल चाहे तुम्हें जितना जानो नहीं तेरे डर खोर, लेकिन आज सुना मोये सॉन्ग और मेरे प्यारे सुनने वालों एक दो नगमाए और उसके बाद यहाँ स्टूडियो से हम रुखसत होंगे। मैं देखता हूँ कि आज का ये वक्त भी कितनी रफ्तार से आगे निकल गया, ये पांच घंटे का प्रोग्राम भी एक अब नुख्ते सिन, लेकिन क्या करूं वक्त के हिसाब से प्रोग्राम मुझे बनाना है और मैं इस वक्त आ गया बेनीज हाउस बैंड और नगमा को पेश कर रहा हूं इश्क सुफियाना।

0: Yeah, beautiful, मेरे प्यारे सुनने वालों.
1: हाँ ये.
0: Benny's House Band, इश्क सूफियाना. मेरे प्यारे सुनने वालों, अब वक्त आ गया
1: okay.
0: कि मैं आखिरी गीत सेवा में पेश करूं. बस यही उम्मीद और आशा करता हूं कि आज जिस तरह से ये 5 घंटे का ये प्रोग्राम हमने UR पर सजाए हैं, बनाए हैं, आप सभी लोगों ने जो साथ दिए हैं, आप सभी ने भरपूर भी एंजॉय किए हैं. अगले हफ्ते शनिवार 12 तारीख को ये प्रोग्राम फिर एक बार हम सजाएंगे, बनाएंगे एकदम लाइव एंड डायरेक्ट UR के स्टूडियो रोटरडम से. आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेल, शुक्रिया. आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूँ. कल्याण केदार गीत गाएंगे, लेकिन गीत चलाने से पहले आप सभी से यही कहूंगा कि रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे. सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज. टेक केयर और रिमेंबर, आई लव यू ऑल. बाय.

0: सुनिया पक्की 420 सुनिया पक्की 420 मार मार के अरे मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल मचंटी दुनिया 420 दुनिया पक्की 420
1: जहाँ भी देखे कोई हसीना वही बजा दे

ठोकरियाँ बाकी मस्तानी सब है पैसे की दीवानी, इनको चाहिए मोटा बकरा मोटर साड़ी सुरमे दानी। जहाँ भी तकड़ा इंजन देखा करती शंटम शंटी दुनिया 420 दुनिया पक्की 420।

बीवी बच्चे बहन और भाई सब है मतलब के शहजाई, जेब गरम तो यार हजार, कड़की हो तो कौन हो भारी। एक दिन इनको माल न दो फिर देखो फंटम की दुनिया 420, दुनिया पक्की 420, दुनिया पक्की 420। मार मार गे मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल, दुनिया 420।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

उजाला रेडियो डे अबे प्लस पे देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।